अंत मूर्ख अंत भोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत कल वाय संत पापी पाप अशंत मूर यार करे फुराए संत मलेच माल पाखाए अशंत निंदक करे पाप नानक नीच कहे जा मारे अन जावा के जो कुछ पावे सही परिपाक।

सुख निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया। सो दार राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्व सवाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परिश्यो कही है केते तेरे गावन हारे। गावन तुझनो पवन पानी बैसंतर कावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुझनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुझनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सति संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पण नरखीश्वर जुग जुग वेता नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मछ पयाले। गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सी तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे।

रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उबाई, कर कर देखे कीता आपना, ज्यो तिस दी वडे आई, जो तिस पावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहु साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई, आसा महला पहला।

तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।

निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्याव है सब त्याव है तुरजी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख सवाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्याव है तुद जी।

कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे पा

कर कर वेखह जाणै सोई, जन नानक गुरमुख प्रगट हुए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै भैले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना,

प्रणवत नानक तिन की शरणा, चिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पही परापत मानो।

श्री राघो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ तै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काबू आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा।

जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय।

दैत जच्छन उपजायु आदंत्य कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन सृट सब धार आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम।

कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती। वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। केह विद सजा प्रथम संसारा, एक है रूप अनूप स्वरूपा। रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी। उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा। कहूं सिमट पहू संकरी कैठा, सिगरी सृष्टि दिखाए

दुष्ट अरिष्ट टरैं तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताकि ताप तनक मैं हरिहु, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई। दुष्ट छाह छवै सक

दारिद दुष्ट दुख दे रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैल हो बारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। खड़ग

राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज छेती मन वजिया वादाई।

पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत।

जिकु पुंचै तिसका हुए उदारु। इह वसत जी नह जाई नित नित रख उरतारु। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारु। श्लोक महला पंजवां।

तन मन थी वह हरिया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जमके दूत नाए तेरे छड़ जाहे पाओ जल बिकम सगाहु गुर शब्दी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल

आवै तुदे आहि श्लोक महल्ला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाऊ नित्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाऊ सतगुर से तीरतया दरगह पाई ठाऊ कहु नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

सूतरं तुमते हो सो आज्ञाकारी तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याइए जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे करनो नित्याबे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दत्ते अंतर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई ते गवाही दे के डिठ कीता तना प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी जिन्हां सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना चराए गुरुद्वारा की सेवा लिये कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी किस्सा स्वस्था संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चतावे चतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी सब तह तहर शरियायत देखते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन शना चौकिया झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो हिन माणियो के मान नताणियो के ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे चरणा च अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान बख्शिश हुई अमृत वेले तो लैके हुण तक संगतां नूं खुले दर्शन दारे बख्श के निहाल किया शामा दे दीवाना दे विच महाराज जी संगती रूप विच सुखमणी साहब जी दे जाप किए गए ने संध्या वक्त का समा जाण के सौदा रहर साहब जी दे पाठ होए महाराज कृपा करन बाणी पढ़दियां आप जी की सेवा संभाल करदियां होईयां बेअंत बेअंत भुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालुदम बख्शिश करना जी बाणी का भाव आजा संगतां दे हिरदे ते वसाउणा आईआं संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशा विच रखिआ बख्शिश करनी महाराज जी ओ बिंद संगतां दूर दराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहीआं हन जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे आ बेअंत वाह गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते उन्होंने भेटा की महाराज जी सारी संगत जी हाजरी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाईया बरकत पाया श्रद्धा भावनावान संपूर्ण करनिया चढ़ती कला बख्शिश करनी आप जी के दर घर के सेवक बीबी सुरजीत कौर जी की सालाना याद विच परिवार वालों अरदास बेनती कृपा करनी पिछड़ी आत्मा आत्मक शांति बख्शिश करनी परिवार को चढ़ती कला बख्शिश करनी दर घर के सेवक प्रवीण प्रीति अंकत रेशमा अमन आरिया महाराज जी सारे परिवार की सुख शांति वास्ते आप जी के चरणा च अरदास बेनती दर घर के सेवक लक्ष्मणन कार्तिक अंजलि ईशान अपूर्व महाराज जी समूह परिवार की सुख शांति चढ़ती कला वास्ते परिवार वालों अरदास बेनती कृपा करनी परिवारों नूं चढ़ती कला बख्शिश करनी दर घर के सेवक रणजीत सिंह जी कमलजीत कौर जी परमिंदर सिंह भोगल सारे परिवार की देर उगता परिवार की सुख शांति
ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ।

0: कंखी एक दर्श तुहारो
1: नानकुन संग मोए उधारो
0: सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम
1: जनम के मन विश्राम
0: रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसे
1: प्रभ कै सिमरन दुख क्यों न सह
0: प्रभ कै सिमरन काल पर हरय
1: प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरय
0: प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागे
1: प्रभ कै सिमरन अंतिम जागे
0: प्रभ कै सिमरन पहो ना व्यापै
1: प्रभ कै सिमरन दुख नाशन पाके
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नाव नेत
1: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान सत बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन

0: प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए
1: अमृत नाम हृदय माहे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना
1: नानक जन का दर्शन दसना
0: प्रभु को सिमरै से धनवंते
1: प्रभु को सिमरै से पतवंते
0: प्रभु को सिमरै से जन प्रवान
1: प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान
0: प्रभु को सिमरै से बेमुहताजे
1: प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै से सुखवासी
1: प्रभु को सिमरै सदा अनासी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: जन की
0: प्रभु को सिमरै से पर उपकारी
1: प्रभु को सिमरै से सद बलिहारी
0: प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे
1: प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता
1: प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
0: प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे
1: प्रभु को सिमरै बसे अरनेरे
0: संत कृपा ते अन दिन जाग
1: नानक सिमरन पूरे भाग
0: प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभु कै सिमरन सहज समानी
0: प्रभु कै सिमरन निःचल आसन
1: प्रभु कै सिमरन कमल विवासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार
1: सुख प्रभु सिमरन कांत न पार
0: सिमरह से जन जिन को प्रभु माया
1: नानक तिन जन सरनी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीच जो गुण जाते
0: हर सिमरन ता

0: तत्काल उदारे।
1: अनक जून जन्मे मर जाम
0: नाम जपत पावे बिसराम।
1: हो मैला मल कबू न तोवे
0: हरता नाम कोट पात होवे।

0: अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मूर्त कवन दिशानी
0: जिन तू साज सवार सिगारिया
1: गर्भ गण में जिने वारिया
0: पार व्यवस्था तुझे प्यार दूध
1: पर जोवन भोजन सब सूद
0: इर्द भया ऊपर साख सहन
1: मुख प्याओ बैठ को देन
0: इहो निर्गुण गुण कशु न बूझे
1: मक्ष लियो तै नानक सीजे
0: जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसै जे प्रसाद की वैसी तल जला
1: सुखदाई पवन पान कुमला
0: जे प्रसाद भोग सब रसा
1: सगल समग्री संग साल वसा
0: दीने हस्त पाव करन नेतर रसना
1: किसे त्याग और संरचना
0: ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे
1: नानक काट लियो प्रभु आपे
0: आद अंत जो राखन हार
1: जिसो प्रीत न करे गवार
0: जाति सेवा नव नेद पावे
1: ताचो मूड़ा मन ने लावे
0: जो ठाकुर साथ सदा हजूरे
1: ताको अंदा जान अंदूरे
0: जाकी टहल पावे दरगह मान
2: जिसे मिसारे मुग्ध अजान
0: सदा सदा इहो पूलन हार
2: नानक रखन हार अपार
0: रतन त्याग कवि संग रचे
1: साचो चूर सम्मचे
0: जो षडना सो अस्थिर कर मन
1: जो मन सो दूर पुरन
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
1: संग सहारी तिस पर है
0: चंदन लेप उतारे तोए
1: गर्द प्रीत पसंद संगोए
0: अंध कूप में पतत बिकराल
1: नानक काट लियो प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोग बचारा करे दिन रात
0: बाहर पेख अंतर मल माया
1: शब्द नहीं कछ करे छुपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान।

0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे,
1: परगले ओढ़वावे,
0: कहा बुझारत बूझे डोरा,
1: जस कहिए तो समझे पूरा,
0: कहा बिसन पद गावे गूंग,
1: यतन करे तो भी सुर भंग,
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन,
1: नहीं होत वहां उस गवन,
0: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे,
1: नानक तुमरी कृपा करे,
0: संग सहाई सो आवे नाचीत,
1: जो राई चासो प्रीत,
0: बलुआ के ग्रह पीतर बस,
1: मन केल मारम रस,
0: दृढ़ कर मन है प्रतीत,
1: कानावे मुड़े चीत,
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह,
1: चूड़ विकार मालो
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म,
1: नानक राख लियो अपन कर कर्म,
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास,
1: जियो पिंड सब तेरी राज,
0: तुम मात पिता हम बारक तेरे,
1: तुमरी कृपा मैं सूखने रे,
0: कोए न जाने तुमरा अंत,
1: उच्चे ते ऊंचा भगवंत,
0: सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी,
1: तुम ते आज्ञाकारी,
0: तुमरी गात मित तुम्हें जा।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्प स्वरूप
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान
1: जैसे राजरंग कौला के तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर्जेक
1: जो वसुधा को खोदय को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का यो बनाओ
1: नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैं नला के जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन में
1: जैसे तारु पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत समान।

0: ज्ञानी से कछु बुरा न पया।
1: ज्ञानी
2: सदा समदर्शी
0: ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी।
1: ब्रह्मज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्मज्ञानी के निर्मल युक्ता।
1: ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।
1: ब्रह्मज्ञानी एक उपरास
0: ब्रह्मज्ञानी का नहीं।

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे।

0: नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन बार ब्रह्म का निवास,
0: तिसका नाम सत राम दास,
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास दसंतन पाए तिन पाया,
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सुदास दरगह परवान,
1: अपने दास को आप कृपा करे,
0: किस दास को सब सोजी पर,
1: सगल संग आत्म उदास,
0: ऐसी जुगत नानक।

0: तैसा अमृत तैसी बिख खाटी,
1: तैसा मान तैसा अभमान,
0: तैसा रंक तैसा राजान,
1: जो वरताए साई जुगत,
0: नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ,
1: आपे करन करावन जोग,
0: प्रभ पावे सोई फुन होग,
1: पसरे ओ आप होय अनत तरंग,
0: लखे न जाहे पार।

0: अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार बिहारी
0: कई कोट पय तीर्थ वासी
1: कई कोट बन पर में उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तवि स्रोते
0: कई कोट आत्म ध्यान तार
1: कई कोट का विचारे
0: कई कोट नव तन नाम ते आवे
1: नानक करते का अंत न पावे
0: कई कोट पय अभिमानी
1: कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपन कठोर
1: कई कोट भिक आत्म कोर
0: कई कोट पर दर्ब कोहिर
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट परदेश परमाहे
0: जित जित लाभ हो तेत तेत लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पात्र बिरखन बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंत्र
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट शशि सूर नखे।

0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र
0: कई कोट किए रत्न समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चर जीवे
1: कई कोट गिरी में स्वंथी
0: कई कोट जख किन्नर पिशाच
1: कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच
0: सब ते निरह सब हूते दूर
1: नानक आप बोल पुत्रे हो भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक सुर्ग निवासी
0: कई कोट जन्म जीव मर
1: कई कोट बाजो नीकर
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काल तक पाहे
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में चिंत
0: जह जह पहना तय तय राखे
1: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे
0: कई कोट पए बैरागी
1: राम नाम संतन लागी
0: कई कोट प्रभ कौ खोजंते
1: आत्म में पार मुलांते
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
1: जिनको मिले प्रभु नास
0: कई कोट मांगे।

0: ताका अंत न जाने कोई
1: आपे आप नान प्रभु सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तात के बेते
1: सदा निहारे को नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीवे
1: अमर पै सब सदी जीवे
0: कई कोट नाम गुण गावे
1: आत्म रस

0: गर्भबले
1: अस्पदे जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरक पति होवत स्वान
1: जो जन मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जन।

0: वै सगले फिर थारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक सुर्ग फिर फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै
0: हर हर गह कहो कैसे गवै
1: आपस को

0: नानक साधही रहया समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचया सब कै साथ
1: आप किनो अपन विस्तार
0: सब कश उसका ओ करने हार
1: उससे भिन्न कहो किचो
0: थान थनांतर एक कैसो
1: अपने चलत आप करने हार
0: कौतक करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने वख्यानी
1: सच सच सच सब कीना
0: ओट मधे किने बिरलै चीना
1: पला पला पला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
0: घट घट सुनी सर्वन

0: संत कै दुखन सुख सद जाए,
1: संत कै दुखन नरक में पाए,
0: संत कै दुखन मत होए मलीन,
1: संत कै दुखन सो बाते,
0: संत के हते को रखे न कोई,
1: संत के दुखन दान पृष्ठ होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत सम निंदक विचरे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन कै दुखन काग जो लवे,
0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत कै दुखन त्रिग जोन करमाए,
0: संतन कै दुखन तृष्णा मैं जले,
1: संत कै दुखन सब को छले,
0: संत कै दुखन तेज सब जाए,
1: संत कै दुखन नीच न जाए,
0: संत दुखी का थाओ को नाहे,
1: नानक संत पावे ताओ विगत पाहे,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक खिंड न पाई,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक
0: सरमारा, संत का निंदक राज ते हीन,
1: संत का निंदक दुखिया दीन,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सर्व योग,
0: संत की निंदा दुख मैं दुख,
1: नानक संत पावता उस पर भी मुख,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत के दुखी किसे का निमित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्यागे,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा भिखारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
2: संत का दुख न सुख से डरे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
2: नानक संत पावे तले मिलाए,
0: संत का दुखी अध बीच ते टूटे,
2: संत का दुखी किते काज न पहुंचे,
0: संत के दुखी को उद्यान परमाइए,
2: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते सोथा,
2: जो सांस बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किश नाहे,
2: अपन बीज आपे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
2: नानक संत पावे तले उवार,
0: संत का दुखी एवं बिल लाए,
2: जो जल बिहून मछली तड़पाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
2: जो पाप के ईंधन नहीं त्रपे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: जो मुआड़ चल के तुम्हारे जो हिला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सदमितिया कहत,
0: किरत निंदक का तुर ही पया,
2: नानक जो दिस पावे सोई किया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
2: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सह काई है,
2: संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है,
0: संत के दुखी की

0: हर हर कै नानक उजल मथा
1: अग्नि तेजन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: सिर अनंत कनी संसार
1: मन तन मुख मन तन

0: से बिरथा कोई नाही।
1: रे मन मेरे सदा हर जाप,
0: अविनाशी प्रभ आपे आप।
1: आपन किया कछु न होए,
0: जे सौ प्राणी लोचै कोए,
1: तिस बिन नाही तेरा किछ काम।
0: सत नानक जप एक हर नाम।

0: अपने जन का पर्दा ढाके
1: अपने सेवक की सर पर रखे
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत रखे रखे सेवक को न पूछे
1: सेवक ऊंचते ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक तह जिस प्रगटाया
0: निकी कीरी में कर रखे
1: जिसका
0: शासन करते आप
1: रखत देकर
0: मानस जदू करत बापात।

0: मन ते है नसे
1: जिसका साथ इन कृपा तारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: सित पाई चूके प्रम गवन
0: सुन नानक हर हर जस श्रवन
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओहि
0: अगला तार जिन सगले

0: अष्टपदी। आप कथे आप सुनने हार,
1: आपे का विस्तार
0: क्या तिस भावे तन सृष्ट उपाय,
1: अपने पाने ले समाए
0: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
1: अपन सूत सब जगत पुरोए।

0: सो गौरा होए, अपराधी दूणा निवे जो हता मिर्गाही, शीश नवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाहे। महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सेल पूजस बगुल समादंग

रखै जन की आप तरण तारण हार निद दुख ना सकै बे आप दीन दर्द निवार ठाकुर रखै जन की आप तरन तारण हार निद

तिस बिना नहीं कोई, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमृत कथा शास्त्र भगत करहे विचार, मुक्त पाई है साध संगत, बिन सुजाए अंधार, चरण कमल

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी।

प्रबंधक कमेटी अते बटाला निवासी संगतां वल्लों सच्चे पातशाह जीओ जो परसों रोज तो तुरकी बाणी दे जाप प्रारंभ होए भोग पए उपरंत गरीब नवाज अज हफ्तावारी एतवार दे दीवान सतगुरां दे विआह पुरब नूं समर्पित करदिआं होइआं बेअंत गुरु घर दे कीर्तनियां ने गुरमुख जना ने आप जी की अमृत बाणी दा कीर्तन कीता गुरमत विचारां संगतां नूं सरवण करा के निहाल कीता सतगुरु जीओ आप जी के पावन पवित्र दरबार दी समुची सेवा निभांदिआं दसरिआं पासों होईआं बेअंत भुल्लां आप जी ने खिमा कर देनी अगे तो सावधानता बख्शिश करनी कृपा करनी इन्हां महान समागमां विच जितनियां भी संगतां ने तन मन धन दे नाल तीन रोज सेवा कमाई सभना दियां दातां मुरादां आप जी ने पूरियां करनियां दरों घरों नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना अपने चरण कमलां दी प्रीत और प्रतीत बख्शिश करनी बच्चियां नूं गुरसिखी दी दात विद्या दी दात बख्शिश करके नवाजना गरीब नवाज आप जी के पावन पवित्र चरण कमलां विच सेवकां दियां अरदासां हन भाई जयदीप सिंह नाहल दे परिवार दी सुख शांति दी अरदास मनजिंदर सिंह दे परिवार दी चढ़दी कला दी अरदास कुलविंदर सिंह अते जसवंत कौर दी देह रोगता दी अरदास अमरप्रीत सिंह दी पढ़ाई दे अते चढ़दी कला दी अरदास जसवीर सिंह तखर दे परिवार दी सुख शांति अते चढ़दी कला दी अरदास दिलप्रीत कौर दे 21वें जन्मदिन दे संबंध अंदर सतगुरु जी आप जी के चरण कमलां विच अरदास बेनती कीती जांदी है भाई सुभाष हंदेर परिवार दी सुख शांति दी अरदास भाई रिशपाल सिंह दुसांझ परिवार दी चढ़दी कला दी अरदास बच्चियां सनाक्षी अते राधिका दी चढ़दी कला दी अरदास भाई रजिंदर सिंह सचदेवा जी दी देह रोगता दे लई आप जी दे चरणां विच अरदास बेनती आप जी ने कृपा करनी भाई प्रभजोत सिंह सचदेवा परिवार दी सुख शांति दी अरदास सोखी विरदी सेगू फैमिली चढ़दी कला दी अरदास बीबी सोनिया ते शर्मिला देह रोगता दे परिवार दी सुख शांति दी अरदास वरन अते अलिस्का परिवारां वल्लों आप जी दे चरणां विच चढ़दी कला दी अरदास भाई बलबीर सिंह मुल्तानी परिवार दी सुख शांति दी अरदास गरीब नवाज कृपा करनी समूह परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना अपने दर घर दे वजीर भाई महेंद्र सिंह जी बाजवा तिन्हां दी देह रोगता दी अरदास आप जीआं ने चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना गरीब नवाज इस वक्त कृपा करो आप जी दी कृपा सदका दीवाना दी संपूर्णता है जी पावन पवित्र श्री मुखवाक बख्शिश करो उपरंत दोपहर तो बाद दे दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो सही प्यारे मेल जिन्ना मिले आप जी का नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे जो

समा थोड़ा तेज चल रहा है ना, पच्चीस तक पूरा कर सारी हट पैंती अखरी उड़ा एड़ा एड़ी सारे ने बोलना जी ना।